ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सपना हो। ये पहाड़, ये लोग, ये पेड़, ये हवा, ये नावी, सब मुझे बहुत अच्छा।